0: www.iwebguy.ca।
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890। लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, यू आर लिसनिंग टू कैलगरी'स मोस्ट पॉपुलर रेडियो, रेडियो सबरंग 94.7 FM।
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.
5: गेस्ट पहुंच चुके ने जी स्टूडियो च, काफी देर वैसे पहुंच चुके ने, बट मैं ही थोड़ा लेट हां, तो एक ब्रेक लेके फिर वापस मिलेंगे।
6: की तुहाड़ी अपनी वेबसाइट है पर तुसी टैक्स, फोटोज या वीडियोस चेंजेस खुद नहीं कर पांदे, ता तुहानू लोड है आई वेब गाय वाले नु 403-400-0203 403-400-0203 ते कॉल करन दी www.iwebguy.ca।
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890। लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
7: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। Monday, Tuesday, Thursday and Friday 7 to 8 p.m. Sunday 1 to 5 p.m.
8: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student Visa, Visitor Visa, Super Visa, LMIA applications, Family Immigration, Provincial Nominee application, ate Citizenship application vich lamba tajruba te maharat rakhta hai. Tuhadi sahulat layi main Maninder Singh Dhillon ate Inderjot Kaur Dhillon ikko chhat het immigration ate insurance diyan sewawan pradan karde han. Sanu sampark karn layi 403-225-1111. Maninder Singh Dhillon, Asia Pacific Immigration Consulting Limited.
9: Regulated Canadian Immigration Consultant.
8: 403-225-1111.
7: From the heart of Calgary to every corner within a 250-kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories, and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore, and beyond, we are one sound,

0: one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca.
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਸਾ ਆਪਕੋ ਇਸਕੇ ਪਾਸ ਮੇ ਆ ਕੇ ਜਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ,
2: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
1: ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਮੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਜਾਏ ਜੋ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ।
2: ਓਕੇ ਜੀ,
1: ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ,
2: ਔਰ
1: ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਆਪ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਕੇ ਸਾਥ ਆਏ।
2: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਾਜੇ ਜੀ, ਆਪ always giving a support to all the societies including Indians and YVC society
1: जी जी।
2: और ये बहुत अच्छा मतलब जरिया है सब लोगों को बताने के लिए हम क्या इवेंट्स करते हैं कैलगरी में, सबको आप सपोर्ट करते हैं। तो हम योगा का एक इवेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल योगा डे का, मतलब बड़ा एक अच्छा इवेंट और सारी कम्युनिटी के लिए है, फ्री इवेंट है, जेनेसिस में 21 जून को कर रहे हैं हम लोग, और काफी लोग हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, एंड ईशा फाउंडेशन से अंकुश जी यहाँ पे है, एंड चारू जी हमारी कल्चर सेक्रेटरी हमारी, एंड वीरपाल जी इज द टाइटल स्पॉन्सर, और ये भी काफी आप तो जानते हैं, सारे कई लोगों को सपोर्ट करते हैं,
1: लोग जानते हैं
2: तो हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, शी इज टाइटल स्पॉन्सर, थैंक यू वेरी मच। और एक हार्टफुलनेस है, मेडिटेशन कराते हैं, वो भी हमारे साथ में है, और भी बाकी कम्युनिटी के काफी लोग आ रहे हैं, सारी कम्युनिटी मिक्स पूरी कैलगरी को इन्वाइट कर रहे हैं हम लोग आने के लिए। तो हम तो अरेंजमेंट कर रहे हैं पूरे, और साथ में जो योगा का हमारे पार्टनर हैं ईशा फाउंडेशन, वो डिटेल में आपको बताएंगे योगा और उसके बारे में कैसे करेंगे हम वहाँ पे।
1: जी बिल्कुल जी, पहले आप सबका बहुत स्वागत है और थैंक यू वेरी मच। आप ऐसा लग रहा है कि भी जैसे रेडियो और कैमरा ऑन हो गया और सारे शांत हो गए, इसके पहले सारे खूब मस्ती कर रहे थे। सो जी, तो थोड़ा इस माइक के पास पास आके, क्योंकि मुझे लगता हमने माइक ज्यादा लगा दिए।
3: जी नमस्ते, मेरा नाम अंकुश है और मैं ईशा फाउंडेशन के लिए वॉलंटियर करता हूँ, 2013 से वॉलंटियर करता रहा हूँ, और
1: काफी 13-14 साल हो गए।
3: हाँ जी, यस।
1: तो आप गुरु बन गए होंगे?
3: नहीं नहीं नहीं, गुरु तो हमारा एक ही है, वो है सदगुरु। सदगुरु एक योगी और मिस्टिक है, जो यू नो 24 घंटे उनके जो एफर्ट्स हैं वो सारे सिर्फ ह्यूमन वेलबींग के ऊपर ही जाते हैं। तो जो जिस डेप्थ पे सदगुरु काम करते हैं, वो भी मतलब उनका काम सिर्फ भीतर को अलाइन करना और भीतर को एक किस्म से सुलझाना,
1: ठीक है जी।
3: तो उनके जो टूल्स हैं, उनके जो मेडिटेशन और योगा के टूल्स हैं, वो एक किस्म से बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइंड है, बहुत केयरफुली डिजाइंड है, कि यू नो वो कहते हैं कि जैसे मर्जी आप आओ, जैसे मर्जी आप यूज करो, काम तो करेंगे, जो भी आपकी इंटेंशंस हैं।
1: जी जी,
3: किसी भी इंटेंशन से आप आओ, अगर आपको कोई बैक एक है या आपको कोई भी यू नो मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, किसी भी इंटेंशन से आओ, आप टूल को यूज करो। जैसे जैसे अगर आप फोन पे भी यूज करते हो, फोन मतलब बिल्कुल मालूम नहीं होता कि कैसे काम करता है, बट मालूम है कि कहाँ पे ऑन का बटन है और कैसे उसको इस्तेमाल करना है। तो वैसे ही योगा और मेडिटेशन जो सदगुरु सिखाते हैं, वो किस्म से एक ऐसा ही टूल है कि अगर आप यूज करो, वो काम जरूर करेगा, और वो जो काम किया है वो मेरे लाइफ पे भी किया है।
1: तो आपको काफी फायदा हुआ उसका?
3: बिल्कुल,
1: अभी 13 साल से आप कर रहे
3: हैं। बिल्कुल,
1: वेरी गुड, बड़ा अच्छा जी। योगा जेड़ा बड़ी वधिया चीज हुंदी है, जेड़े लोकी करदे उन्होंने पता, मैं इना नहीं करदा, पर
2: राजेश जी हमारा जो काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने सपोर्ट किया हमारे इस इवेंट को, और स्पेशली वो रिप्रेजेंटेशन वहां से आ रहा है हमारे इस इवेंट में, तो उन्होंने हमको काफी सपोर्ट किया है इंटरनेशनल योगा डे के लिए, तो उनको भी थैंक यू करना चाहते हैं, काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया।

0: है वैंकूवर को।
1: थैंक यू वेरी मच। योगा तो हमारा जिसको कहते भी बचपन का ही बैक होम की सबसे बड़ा एसेट है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। और मेडिटेशन जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब वो भी बाहर जाते हैं तो वो बुद्ध की वो लेके जाते हैं। अभी मैं बुद्ध के देश से आया हूँ जहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो आती है मेडिटेशन, क्योंकि हजारों साल पहले से ये चला आ रहा है। तो दैट्स अ वंडरफुल थिंग।
0: डिक्लेयर भी किया
1: है जी। और हमारे प्रोग्राम की जो मेन टाइटल स्पॉन्सर है जी जेडे इन्होंने नाम बोलिया तो उन्होंने कहना भी मेरी टाइटल स्पॉन्सर जा रही है।
0: और ये काफी मेडिटेशन भी करती हैं
1: जी जी बिल्कुल।
0: बिफोर मतलब तभी मैंने इनको अप्रोच किया।
1: नहीं बड़ा अच्छा
0: वेरी गुड फ्रेंड आल्सो
1: जी। तो आप इनके लिए माइक पकड़े और ये बड़े वाला माइक जो हमारा स्टूडियो का जी। तो वीरपाल जी पहला तो ता बहुत बहुत स्वागत है। तुम जिन्होंने कहते ना भी एक आंदा हुंदा सी नाटक विच ऐड आंदी सी आजकल बड़े शाये हुए हो ना। चंगा करोगे तो फिर अपने आप ही लोग पुछेंगे ताडे बारे। सो विच इज वंडरफुल है। एक किसी किसी नूं मौका मिलदा सो तुहानूं मिलिया। तो मैं एक सचिन तेंदुलकर दा ना एक विच विच मैं गल्लां अपनी भी मारनी नहीं तो लोगों ने कहना की तेरी गल्ल। सचिन तेंदुलकर नूं ना एक कोई बंदा कहिंदा वी तेरे को इन्ना टैलेंट है ते तू मतलब वधिया खेलदा पिया तेनू। ते कहिंदा मेरे फादर ने मैनू कहा सी जे तेनू टैलेंट दित्ता ना तो उन्हूं दोनों हाथों नाल लै ते उहदा शुक्रिया कर उपर वाले दा ते उहदे ते कम भी कर। इह नहीं वी टैलेंट होना एक गल हुंदी है पर टैलेंट दे नाल जस्टिस करना ते दूसरी गल हुंदी है वी इह तुहानूं हुण कुछ हुनर मिलिया जां कुछ परमात्मा ने बख्शिया ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ
2: ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ।
0: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਝ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਬਤਾਇਆ।
2: ਆਈ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲਾਈਕ ਵੈਨ ਯੂ ਬ੍ਰੌਟ ਦਿਸ ਅਪ ਟੂ ਮੀ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਯੋਗਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵੈਰੀ ਕਲੋਸ ਟੂ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਸੋ ਦੈਟ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਭੀ ਕਿਤਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਫ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਯੋਗਾ ਐਂਡ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਵੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦਾ ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ।
1: ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ
2: ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਫਰਮ ਯੂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਵੀ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੱਲ ਯੋਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੋਕੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚਲੋ ਤੇ ਜੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਨਦਰ ਲੈਵਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਫਿਰ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਯੋਗ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਰਾਈਟ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਨਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦਿਸ ਈਵੈਂਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੋਲ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। तो आप रेडियो को भूल जाते हैं आई थिंक भी हम भूल जाते हैं भी रेडियो के लिए भी आना है थोड़ा थोड़ा इस माइक के पास आपने बोलना आपने। हाँ जी नमस्कार। और आप अपने बारे में भी थोड़ा सा बताएं और हमारे जो सुनने वाले हैं दोस्त उनको पता चल जाए कि हमारे स्टूडियो में आज गेस्ट पहुंचे हुए हैं तो तुम दस दिए भी मल्टीपल गेस्ट डाइवर्स पर्सनैलिटीज डिफरेंट डिफरेंट इन्हों का जरा लाइफ का एक्सपीरियंस है जरा सा शेयर कर रहे हैं जी। आप थोड़ा सा इनका नाम तो आपने तो बताया नहीं।
0: चारू भटनागर जी ही इज आल्सो वेरी फेमस पर्सनालिटी इन कैलगरी। हमारे सारे कल्चरल सारे सब में हेल्प करते हैं काफी सोसाइटीज में।
2: हां जी
1: चारू जी थैंक यू। मैं लगता है मिले हुए हैं पहले।
2: हां जी आपसे मुलाकात हुई है और यही हुई भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन वाईवाईसी के साथ जुड़े रहना एक अपने आप में एक बड़ी खुशी की बात है। सीधा इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम अपने ही लोगों से फिर से एक बार मुलाकात करते हैं इस तरह से कि सब चाहे वो योगा हो चाहे वो चाहे वो इवेंट्स हो चाहे हमारे कल्चरल कनेक्शंस हो और सबसे बड़ी बात है हम अपने ही लोगों को दोबारा से एक बार याद दिलाते हैं जो हमारे पिछले ट्रेडिशंस हैं पुराने ट्रेडिशंस हैं और अभी जो योगा है वो उसी उसी उस पे है। 5000 साल पुराना ये एक हमारा

0: ट्रेडिशन है योगा जिसे मोदी जी ने भी पूरा दुनिया में फैलाया है और उनकी वजह से ये इंटरनेशनल डे भी बन रहा है. तो आई थिंक अगर इस वक्त हमको सबसे ज्यादा एक दूसरे से जुड़ने की जरूरत है, इतनी स्ट्रेस भरी जिंदगी में अगर चार लोग अच्छे मिल जाएं तो उसमें और अच्छी बात क्या होगी. और वो भी एक मेडिटेशन से, एक अपने उससे कि भाई आप अपने को भी जाने और आपके इर्द गिर्द में रहने वाली एनर्जीज को भी आप पहचाने कि कौन अच्छा है कौन कैसा है. तो एक अच्छा तरीका है मेडिटेशन करने का और एक अच्छा तरीका है अपनी जमीन से जुड़े रहने का. तो आइए, बिल्कुल आइए, 21 तारीख को हमारे साथ मिलिए. और हम चाह रहे हैं कि 11 से 2 का टाइम है, सब रिलैक्स करें, आए मिलें, मेडिटेट करें, अपने आप से जुड़ें, अपनी धरती से जुड़ें. हम जहां रह रहे हैं, कैलगरी इतनी खूबसूरत जगह है और समर के टाइम पर तो और लहराती झूमती हुई जगह दिखती है ये. तो आइए, बिल्कुल संडे का दिन सुबह हमारे साथ बताइए. तो
1: अभी हमारे ऑलरेडी 300 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 300 रजिस्ट्रेशन हमारे हो चुके हैं और अभी काफी लोग आ रहे हैं और डिफरेंट कम्युनिटीज के आ रहे हैं, नॉट फ्रॉम इंडिया ओनली, लाइक फ्रॉम जापान. मैंने देखा है काफी सारे मतलब कंट्रीज के लोग आ रहे हैं इसमें.
2: जी, जी, जी,
1: और हम लोगों ने रिफ्रेशमेंट भी रखा है वहाँ पे थोड़ा, और इवन ब्राइट पर रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि आपके डिटेल्स मिल जाएंगी और कितने नंबर्स आ रहे हैं. और जेनेसिस सेंटर में है, इट्स वेरी लाइक कन्वीनियंट, पार्किंग वहाँ बहुत अच्छी है और 11 से हम शुरू करेंगे और 2 बजे तक खत्म कर देंगे. तो सब लोग आए, एंजॉय करें, योगा सीखें,
3: मिलेगा वहाँ
1: रिफ्रेशमेंट मिलेगा, फ्रूट्स की वी वांट टू प्रमोट हेल्दी फूड,
0: सेहत से भरपूर मिलने वाला आपको चाय पानी
1: होगा. सो टी जूसेस फ्रूट्स वी आर प्रोवाइडिंग.
3: मुझे भी जब मैं आ रहा था ना तो हमने घर पे चाय तो बनाई थी, मेरी सोची भी ये योगा की बातें करने जा रहे हैं तो इनको जल्दी से पकौड़े खिला दें.
1: हमने हेल्दी ऑप्शन रखा हुआ और ये 2 स्क्रीन काफी बड़ी लगाई हैं हमने वहाँ पे और बहुत अच्छे से सब लोगों को दिखेगा, योगा पूरा चलेगा. और ईशा फाउंडेशन से करीब हमारे 10 to 15 टीचर्स भी आ रहे हैं सिखाने के लिए, वॉलेंटियर्स भी आ रहे हैं. इंडियन वावेसी के हमारे करीब 25 वॉलेंटियर्स हैं और हर्टफुलनेस के भी हैं, काफी लोग हैं, कुछ और भी काफी कम्युनिटी के लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे. तो सब आए,
3: चरणदीप जी भी आ सकते हैं, योगा करोगे तुझे भी
4: योगा करवा दें फिर बस कामयाब.
0: नहीं, काफी सारे बुजुर्ग लोग आ रहे हैं और काफी कम्युनिटी से के आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको वहां पर सिर्फ इंडियंस ही नहीं दिखेंगे, आपको कनेडियंस भी दिखेंगे, आपको चाइनीज जापानीज सब आ रहे हैं. तो आइए,
3: मुझे भी करना पड़ेगा
0: बिल्कुल. नहीं, वो बुजुर्ग बना करके और जवान दिखा करके, तो देखिए आप वहाँ से बुजुर्ग बन के आइए और जवान होके जाइए.
5: जिस लेवल की हम प्रैक्टिसेस वहाँ पे सिखाएंगे तो वो प्रैक्टिसेस उसका कोई प्रीरेक्विजिट नहीं है कि आपकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए या आपकी इतने प्रायर एक्सपीरियंस होनी चाहिए. ये एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिसेस हैं जो कोई भी कर सकता है.
1: और योगा मैट लेके आए, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, ब्रिंग योर ओन योगा मैट, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट.
0: हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि अपने योगा मैट्स लेकर आइए, आप पानी की बॉटल्स ला सकते हैं.
1: हाउएवर वी विल प्रोवाइड द वाटर,
0: दो वी विल प्रोवाइड, बट कुछ लोगों को होता है कि व्हेन दे आर स्वेटिंग दे वांट देयर ओन, सो प्रोबेबली दैट विल बी अ ग्रेट आइडिया.
3: बहुत अच्छा जी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है जी. मेरे पीछे जिथे कहते नजर नहीं आना, सबको नजर आ रहा है, योगा डे मनाया जा रहा है 21 जून जेनेसिस सेंटर दे जेडी ग्राउंड बड़े वाले फीचर जिम में का दूसरे
1: नहीं कम्युनिटी जिम,
3: कम्युनिटी जिम में, कम्युनिटी जिम में होगा और काफी कैपेसिटी है ना, को
1: 800 की कैपेसिटी है वहां पे,
3: 800 की है. बट योगा तो आई थिंक भी जितने लोग कर पाएंगे.
1: हाँ जी, हाँ जी.
3: ये ना हो ना भी कोई कभी मैं 10-20
1: नहीं, वहाँ पे एक एक टीचर जो है 20 लोगों को वो भी करेंगे, मॉनिटर करेंगे, CPR का भी सबका इंतजाम है. वी आर डूइंग कम्प्लीटली, बट वी नेवर थॉट वी विल गेट सो गुड रिस्पॉन्स. तो मतलब 300 से ज्यादा ही लोग करीब आ रहे हैं वहाँ पे.
3: बिल्कुल, तो इन्हें लोग जड़े ने आ रहे हैं, तुझे उत्थे पहुंच के और अपनी फैमिलीज दे नाल या पहला रजिस्टर जरूर कराओ.
1: हाँ, इवेंटब्राइट का लिंक है, पोस्टर पे है, हमारे पेज पे है, फेसबुक ग्रुप पे भी है. और वंस अगेन थैंक यू YYC होम केयर, और उन्होंने बहुत हेल्प किया हमारी इस चीज में, एंड लाइक इट्स वेरी हेल्पफुल कि हमें सपोर्ट किया है आपने एंड काफी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो लोग YYC होम केयर को भी आई थिंक यूज करें सर्विसेज के लिए, आई थिंक. और थैंक यू सो मच वीरपाल जी.
3: वीरपाल जी, तो ये जड़ियां सर्विसेज के बारे,
1: हाँ जी,

0: क्योंकि मेन है आपके तो इनको थोड़ा सर्विसेज तो पूछ लो
1: अगेन सी कोई भी बुजुर्गों नु किसी भी तरह दी घर दे विच देखभाल दी लोड है जिथे अपना खुद दा ख्याल नहीं रख सकदे है ना ओवर 18 होन चाहे ओदु छोटी भी हुंदी उनां लई डिफरेंट प्रोग्राम्स है गया पर गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम है कोई खर्चा भी नहीं आंदा पर लोड होनी चाहिए लाइक देयर हैज बी नीड इन प्लेस एंड फिर जिवे कवरेज हो जांदी है आपां गवर्नमेंट फंडिंग विच भी हेल्प करदे हां जी एंड अगेन कमिंग बैक टू दिस इवेंट आई एम वेरी हैप्पी टू
0: बहुत वधिया जी लोकां नूं अपनी फ्लैक्सीबिलिटी वधाउण दा लॉन्जिविटी दा बड़ा अजकल चलदा कि वी अपनी तुसीं उम्र किदां वधाउणी है
2: ते जो अभी जैसे हमारी सोसाइटी है
3: मैं कह पंजाबियों नूं ते स्पेशली लोड हैगी
0: माइक अपने कॉल करके बोल दो तुसीं वी ताकि
4: पंजाबियों नूं ते स्पेशली लोड हैगी संडे दा दिन होवे और होवे तुसीं एक्टिव उनां नूं करोगे ते बाकी
0: संडे इक सैटरडे है
2: संडे को
0: हमारे रेडियो पे भी आना वापस
2: सोसाइटी में हमारे बहुत सारे सीनियर्स भी हैं और जैसे यंग लोग हैं तो हम लोग ऐसे इनिशिएटिव लेके चीजें कर रहे हैं ताकि लोग कनेक्ट भी हों और अपने कल्चर से जुड़े रहें काफी अभी हमारा दिवाली का प्रोग्राम भी आएगा फिर एक डांस वर्कशॉप भी प्लान कर रहे हैं हम लोग वी विल अनाउंस वेरी सून इट्स आल्सो फ्री इवेंट और दिवाली काफी बड़ा अच्छा हम करेंगे जो आप तो हमेशा आते हैं दिवाली
0: जी जी जी बिल्कुल बड़ा अच्छे प्रोग्राम है जी तो इन वाई वाई सी देना दे
2: होली दिवाली
0: करते हैं बिल्कुल
5: मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो जिस हिसाब से मतलब जितने भी आपके ऑनलाइन व्यूअर्स देख रहे हैं या आपके लिसनर्स आपके जो सुन रहे भी है तो अगर आपने कभी योगा किया नहीं तो मैं ये कहूंगा कि ये मौका लीजिए वो एक सिंपल प्रैक्टिस सीखने के लिए क्योंकि एक सिंपल प्रैक्टिस आपके शायद स्ट्रेस कम कर दे स्ट्रेस की वजह से अगर आपका स्ट्रेस कम हो गया तो आपकी एक किस्म से आपके जो जिंदगी जो एक्सपीरियंस है वो बदल सकता है सिर्फ एक 5 मिनट या 7 मिनट की प्रैक्टिस के कारण तो ये प्रैक्टिस इतनी जो हम सिखाएंगे वो इतनी सिंपल है कि कोई भी आ सकता है और खासियत ये है कि ये नहीं कि आप आगे प्रैक्टिस सीख के फिर आप घर जाके भूल सकते हैं तो ऐप सपोर्ट होगी आपके पास रिसोर्सेज होंगे ताकि आप घर पे भी जाके प्रैक्टिस कर पाओ जितने भी सारे इंस्ट्रक्शंस हम प्रोवाइड करेंगे वो सारे इंस्ट्रक्शंस आप घर पे भी लेकर जाके और ये प्रैक्टिस आप घर पे भी कंटिन्यू कर सकते हो तो खासियत यह है कि आपको फिर ये नहीं है कि बारों में आना पड़ेगा आप एक ही बार आके ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस अपने घर ले जाके फिर वहां पे भी आप अपनी प्रैक्टिस पूरी कर सकते हैं
0: बड़ा अच्छा जी को बहुत अच्छा जी
2: थैंक यू अंकुश जी फॉर सपोर्टिंग एंड पार्टनरिंग विद अस
0: तो बड़ा अच्छा जी अज तुहानू दस दिए 21 तारीक नु संडे वाले दिन 11 बजे तो लैके 2 बजे तक जेनसी दे कम्युनिटीज हॉल दे अंदर प्रोग्राम हो रहा है वीरपाल जी जेड़े ने ओ वाई वाई सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਸਪੋਂਸਰ ਨੇ ਮੇਨ ਨਹੀਂ ਟਾਈਟਲ ਸਪੋਂਸਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਟਿਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ
2: ਫ੍ਰੀ ਇਵੈਂਟ
0: ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਨੈਕਸ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ मैट लैके
2: हाँ जी हमारी सोसाइटी सब हमने अरेंजमेंट किए हैं कम्युनिटी के लिए फ्री इवेंट है
0: हाँ कम्युनिटी के लिए फ्री इवेंट है और अपना मैट जरूर लैके आओ ताकि हाइजन दे पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल ते साडे कोल चरणदीप कौर जी भी स्टूडियो च पहुंचे ने इन्होंने जिहड़ा कोई ना कोई पोइम तैयार कीती होनी है ते जिवें जिवें आपां प्रोग्राम दे विच बंदे आ ते इन्हां कोई पोइम भी जिहड़ी है सुनने दी कोशिश करदे आ चरण जी तुसीं भावें कैमरा अपने वाल पासे नूं करके ते पोइम भी सुना दो सानू ताकि एनी मेहनत करदे पे ने अज चरण जी क्योंकि थोड़ा थोड़ा ना माहौल दे विच अपनी चीजां जेड़ियां ने सिख रहे ने
5: इत्थे
0: पोइम जेड़ी है तुसी अच्छा मैं माइक उहनां दा ऑन करता वैसे बट चलो तुसी अज कोई वधिया पोइम जेड़ी है ने काफी ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਾ

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0300-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदा। लिसनिंग टू कैलगरी'स मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरंग 94.7 FM।
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility,

0: नोट करो नंबर अरुण कौशल दा।
1: कर लिया जी नोट फोन नंबर 403-618-2112।
0: रियल एस्टेट दे सब मसलियां दा हल करनगे प्रेप रियलिटी दे मशहूर रियलटर अरुण कौशल।
1: अच्छा जी अरुण कौशल लब के देनगे सानू कर।
0: जी हां कल्ले कर नहीं प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल होवे जा कमर्शियल कर खरीदना होवे जा बेचना प्रेप रियलिटी दी वड्डी टीम तो हाडे लई करेगी दिन रात एक। कैलगरी शहर तो इलावा नेड़े दे शहरां दे विच इना दे कोल लिस्टिंग दा वड्डा खजाना है। प्रॉपर्टी बेचण लई जा खरीदण लई याद रखो अरुण कौशल का फोन नंबर 403-618-2112। अरुण कौशल। मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया। कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी हिंदी उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम। सब दा माण सब दी चाहत अपनी सुपनमई कार खरीदने लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 403-903-6757। मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स।
1: ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ।
2: ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ।
1: ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਸੀ।
2: ਲੈ ਦੱਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਤੇ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ 403-607-4408।
1: ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਮੰਗਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ 403-607-4208 ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ।
3: ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੀ ਨੂੰ ਬਸ ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਲਈ ਜਾਇਓ। ਵੀਰੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਟੋਰੰਟੋ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ।
4: ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਐਲਟਰ ਜੱਗੀ ਤੇ ਲੋਹਰਾ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੱਗੀ ਤੇ ਲੋ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ।
3: ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਕਸਵੈਲ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਐਲਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੱਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਜੱਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 403-616-2445।
5: ओहो आज फेर नहीं लोड मिलिया।
6: की होया?
5: बस पूछना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन।
6: ओहो रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी जल्दी गाल करके कोई हल लब्बो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 587-832-1208 या रमन वड़ैच 780-753-0001। सोनिक इंश्योरेंस।
2: हेलो गोपी शुक्रिया तू फोन चुक लिया। जिद्दण दा नवा घर लिया सज्जन मित्र फोन चुकणो भी गए।
1: ओ सारे डरदे नहीं चकदे उनां नूं लगदा तू मूविंग ली कहूंगा कौन इन्ने भारे समान नूं हाथ पावे।
2: ओ नहीं भरावा मैं इंज नहीं करदा आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालियां नूं इक फोन करीदा ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा समान सही सलामत बिना किसे झंझट दे मूव कर जांदे आ।
7: अपने घर जां ऑफिस दा समान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नूं अज ही कॉल करो 403-870-1790 403-870-1790 स्टार मूवी। नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस। एना ही नहीं एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट सुइट भी बनाई जा सकती ने। बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका। फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन। वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नू 403-617-2111 ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते। बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है।
6: ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

वक्त बदलिया दुनिया बदली एक रिश्ता जो कदे नहीं बदलिया दो रूहां दा मिलना हर जन्म एक कहानी लिखी गई किसी ने सच ही कह मोहब्बत करन वाले हर जन्म मिलते ने

0: Player or App Store, connecting you to the community anytime, anywhere.
1: 94.7 FM रेडियो सुरसंगम हर हफ्ते वी घंटे सुनो मंडे टू फ्राइडे शाम 4 तो 5 कुलदीप सिंह विचार चर्चा शाम 8 तो 9 जितेंद्र पन्नू रेडियो सुरसंगम .ca फोन 403-585-0910 रेडियो सुरसंगम
2: कैलगरीज ओल्डेस्ट बिगेस्ट एंड ओनली साउथ एशियन रेडियो स्टेशन सबरंग रेडियो 94.7 FM
3: मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे 7 to 8 PM संडेज 1 to 5 PM
2: विजिट sabrang.ca
4: The following program speaks to the South Asian community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.

0: फ्लाइट बहुत लेट हो गई, खान ले बर्गर ले लिए।
1: ना जी, अप्पा ते गर्मा गर्म रोटी खावांगे।
0: माले नखरे ना करो, मेथो रात दे 3 बजे रोटियां नहीं पकदियां।
1: ओहो, तो हानू नहीं कष्ट देना, अप्पा चलना समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स, जो 24 घंटे खुले हुंदे ने।
2: समोसा हाउस इंडियन कुजीन, ब्रेकफास्ट विच गर्मा गर्म परौठे, लंच एंड डिनर विच पूरियां, छोले भटूरे, फिश टिक्का, चाइनीज इंडियन फूड, हर प्रकार दी मिठाइयां अते केटरिंग भी करदे ने। इंडियन कॉफी अते कुल्लर स्पेशल चाय भी इना कोलो मिलदी है। हर प्रकार दे खाने वाले शानदार रेस्टोरेंट समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स, ओपन 24 आवर्स, यूनिट 2154-43-10-104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कॉल 403-461-6161।
3: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदियां ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान, ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंद दी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनां नाल भरिया है इन्हां दा शोरूम। अज ही इन्हां दे शोरूम ते पुज्जो, 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515, 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
4: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
5: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा, कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
4: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
5: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां, हफ्ते दे 7 दिन, सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
4: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्ट विंड ड्राइव,
5: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू,
4: तीजी लोकेशन 570-6520 फॉल्कन रिज बुलेवार्ड,
5: चौथी लोकेशन 606 सिटीस्केप,
4: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
5: छेवी लोकेशन 400-45 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
4: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
5: 403-835-2222। नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका, जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस। एना ही नहीं, एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट सुइट भी बनाईया जा सकदियां ने। बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका, फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन। वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नू 403-617-2111 ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते। बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है।
6: ਵਾਸੀਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਓਏਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ। ਸਨਰਿਜ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰਸ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਇਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਵੈਲਕਮ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ। ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 587-617-4696, 587-617-4696। ਓਏਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। 587-617-4696।
5: ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ 94.7 FM ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਸਵਲੀਨ ਕੌਰ ਜਸੜ। ਅੱਜ 18 ਜੂਨ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ।

94.7 FM प्रोग्राम संगीत में हूं शान। June 19th, 2026 साल का 170वां दिन है एंड वी आर 195 डेज अवे फ्रॉम 2027।

0: 732-1208 संपर्क करो तजर्बेकार इंश्योरेंस ब्रोकर मानस पहुजा ते उनदी टीम प्रोफेशनल सेवावां दंदे हन बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस 587-832-1208
1: बड़े सोचा च पए हो वीर जी की गल होगी
2: थक गए हैं घर लब लब के कैलगरी च घर खरीदना ता हुन बड़ा ही औखा
1: तुसी घर चंद्रमा ते लबदे होणे कैलगरी च नहीं आ नोट करो नंबर अरुण कौशल दा
2: कर लिया जी नोट फोन नंबर 403-618-2112
1: रियल एस्टेट दे सब मसलियां दा हल करनगे प्रेप रियलिटी दे मशहूर रियलटर अरुण कौशल
2: अच्छा जी अरुण कौशल लब के देणगे सानू घर
1: जी हां कल्ले घर नहीं प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल होवे जां कमर्शियल घर खरीदना होवे जां वेचना प्रेप रियलिटी दी वड्डी टीम तो ਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 403-618-2112 ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ
3: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਕੈਲਗਰੀ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਸ ਕੰਟਰੀ ਹਿੱਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਤੇ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਸ ਕੰਟਰੀ ਹਿਲਸ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਭ ਦਾ ਮਾਣ ਸਭ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆਪਣੀ ਸੁਪਨਮਈ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 403-903-6757
1: ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਸ ਕੰਟਰੀ ਹਿਲਸ
4: Can change your mood with our unique ability to entertain, educate, and inform while you're driving, working, walking, at home, or away from home. Keep listening. Ahem waqiat aur khabrein, sports, khoobsurat ashar, and your participation. Stay tuned. We will be right back.
5: 94.7 FM प्रोग्राम संगीत स्टूडियो में हूँ शान बात कर लेते हैं सॉकर की फुटबॉल जब तक ना कहें सीरियसली मजा नहीं आता है जितना मर्जी सॉकर वगैरह करते रहें सिर्फ ये जो अमेरिका में हाथ से खेलने वाले बॉल को फुटबॉल कहने का उल्टा रिवाज है ना उसके चक्कर में सॉकर को फुटबॉल कहना पड़ा और अगर कोई और मुल्क होता तो इतनी अहमियत ना होती थी क्योंकि अमेरिका था तो उसने हाथ से खेलने वाले हैंड बॉल को फुटबॉल कह दिया अब पूरी दुनिया को फुटबॉल का नाम कुछ और रखना पड़ा सॉकर रखना पड़ा फुटबॉल ही कहते हैं हम कनाडा में यूएस और मेक्सिको में तीन मुल्कों में 2026 का सॉकर का वर्ल्ड कप हो रहा है दुनिया का ये सबसे बड़ा स्पोर्ट्स मेला होता है बड़े बड़े मैचेस दुनिया में है ओलंपिक्स है पता नहीं क्या क्या है पर सॉकर से बड़ी कोई और चीज है नहीं जिसमें पूरी दुनिया ऑस्ट्रेलिया से लेके न्यूजीलैंड से लेके अलास्का तक इन्वॉल्व होती है हिस्ट्री has been made. Canada ने अपनी लाइफ का अपनी हिस्ट्री का पहला मैच जीता अपने होम ग्राउंड पे वैनकूवर में और अपने मुल्क में होने वाले वर्ल्ड कप में अब कनाडा ने सीरियसली सिर्फ क्या कहते हैं कि जीता नहीं मैच कनाडा क्रश्ड कतर रिकॉर्डेड देयर फर्स्ट एवर फीफा मेंस वर्ल्ड कप हिस्ट्री बाय 6-0 आपको पता चल गया होगा अब तक लेकिन जितना मजा आप ले सकते हैं इस जीत कर लीजिए 6-0 से इसका मतलब है कि फॉरवर्ड ही बहुत अच्छे नहीं खेले डिफेंस भी बहुत अच्छा खेला और क्रश करना यानी एक भी गोल नहीं होने दिया और 6 से जीता तो कनाडा ने पूरी जिसे कहते हैं कि लीडिंग स्पोर्ट्स न्यूज बनी है पूरी दुनिया में थिंक अबाउट इट कि 40 साल से कनाडा खेलने की कोशिश कर रहा है बड़ी मुश्किल से वर्ल्ड कप क्वालिफाई करता है और उसके बाद जीतना तो दूर की बात है कोई गोल भी नहीं कर पाया था पिछला जो कतर में होने वाला वर्ल्ड कप था उसमें कनाडा ने पहली बार एक सिर्फ गोल किया था मैच तो हार गए थे अब 4-5 दिन पहले टोरंटो में होने वाले पहले मैच में कनाडा ने बराबर खेला यूरोपियन एक टीम के खिलाफ एंड उसके बाद तो वैनकूवर में तो जिसे कहते हैं कि बल्ले बल्ले शावा शावा तबाही मचा दी सीरियसली इन 1986 कनाडा लॉस्ट ऑल द थ्री मैचेस जो कि पहली बार कनाडा खेला था अब उसको लेके उससे अगला सारा हारते एंड देन केम दिस नाइट यस्टरडे जिसमें 6 गोल का एक तरह से एक्सप्लोजन आप कह लें जोनाथन डेविड की हैट्रिक इसमें शामिल थी अ पैक्ड कैनेडियन क्राउड एंड अ स्टेटमेंट टू द सॉकर वर्ल्ड दैट कनाडा इज नो लॉन्गर हेयर जस्ट एज ए पार्टिसिपेंट बट एज ए स्ट्रांग कंटेंडर अच्छा यहां आप जितना मर्जी हॉकी की बात कर लें या दूसरे बेसबॉल की बात कर लें लेकिन कनाडा में

0: when more. A lot more. Keep listening. Sangeet Studio, Sean ke saath. Welcome back, 94.7 FM par program aap sun rahe hain Sangeet. Main hoon Sean. June 19th hai aaj. It is 21 degrees in and around Calgary. Mausam aaj to khair acha hai. Aane wale 3-4 dinon mein bahut hi khoobsurat mausam hone wala hai. So if you have plans to go for camping, now is the time, ladies and gentlemen. Uske saath saath aaj mere guest aane studio mein, main thodi der tak aapki mulaqat karaunga. Hamara Calgary city is growing in terms of lot of cultural happenings. Ek lifestyle fashion show hone ja raha hai hamare shahar mein. Entertainment hoga, fashion hoga, khana hoga, who is who, star appearances, ye sari cheeze uske andar hai. It is exciting. So, aapko jo organizers hai, main organizers hai, unke saath baat cheet karaunga thodi der tak, studio mein jaise hi aate hai, phir hum ispe baat karenge. Right now, aise karte hai, I'll take a short break and then uske baad aapse mulaqat hoti hai.
1: ओहो आज फेर नहीं लोड मिलिया
2: की होया
1: बस पूछना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम ते ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन
2: ओहो रह गए ना फेर पीछे मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी जल्दी गाल करके कोई हल लब्बो ताकि अगली बारी तुसी

खूबसूरत पुराने गाने की तरफ लेके चलते हैं। वो कहा जाता था कि वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। और मुझे याद है बुल्ले शाह की सेम लाइंस पे के कनकड़ ने नक नल कीरा तो दिल दिल कीर कर ले। पर ये सजदा वो वाला सजदा नहीं है, पर इट इज फुल ऑफ रोमांस एंड फुल ऑफ नॉस्टैल्जिया।

0: Listeners watch it for Hit Desi Sangeet, blended with news and events. Let an entertainment melt in your brain. Welcome back, 94.7 FM per 5 baj ke is waqt ho gaye hain. Exactly 49 minutes, balki 39 minutes. और मेरे साथ गेस्ट वैसे दो तीन दोस्तों ने शामिल होना है लेकिन स्टूडियो में जो आगे इनसे बात करते हैं शिराज भाई हमारे बहुत ही एनर्जेटिक हैं और बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हैं बहुत इस इवेंट मैंने आपसे जिक्र किया था जब प्रोग्राम शुरू भी मैंने किया था कनाडा लाइफस्टाइल एग्जीबिशन फैशन शो एंटरटेनमेंट होने जा रहा है ये होगा अगस्त 28 को कैलगरी में डेरा बैंकट हॉल में जो कि नॉर्थ ईस्ट में है 37 एवेन्यू पे और इस प्रोग्राम के बारे में मजीद जानते शराज भाई है मेरे साथ सर क्या हाल चाल है
1: कैसे
0: आप कहते
1: हैं शान भाई कैसे हैं ठीक ठाक हैं
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ
1: थैंक यू आपने मुझे इनवाइट किया बहुत बहुत शुक्रिया
0: नहीं नहीं आपका आपको शुक्रिया आप हमारे शहर में इतना अच्छा खूबसूरत शो लेके आ रहे हैं बताइए इसके बारे में थोड़ा सा डेट टाइम वगैरह पहले तो ये बताइए
1: 28 ऑफ अगस्त को है और कनाडा लाइफस्टाइल एग्जीबिशन फैशन शो एंड एग्जीबिशन
0: राइट आपकी माइक आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं अच्छा अब जरा ये बताइएगा सॉरी एक तो 28 को आपकी डेट मैंने देखा है कि 28 से लेके 30th लिखा है
2: 30th
0: तो तीन दिन है ये
2: नहीं दो दिन का इवेंट है 28 ऑफ अगस्त को आपका मीट एंड ग्रीट
0: ठीक है
2: एंड रेड कार्पेट एंड फैशन शो
0: ठीक है
2: और इसमें कुछ सेलिब्रिटीज पाकिस्तान से आ रहे हैं तीन सेलिब्रिटीज जो के दो लोगों ने एज अ कपल हैं जो अब तक नहीं आए हैं
0: अच्छा,
2: कैलगरी इज अ सरप्राइजिंग
0: अच्छा ठीक
2: आपको बहुत जल्दी सरप्राइज मिलने वाला है
0: ठीक है
2: और उनकी बड़ी डिमांड है कनाडा में
0: ड्रामा आर्टिस्ट हैं बिल्कुल पाकिस्तानी जो ड्रामा के आर्टिस्ट हैं वो बहुत पॉपुलर है
2: बहुत पॉपुलर है
0: बिल्कुल ये ड्रामा ने बेसिकली पागल किया हुआ लोगों को अच्छा और 28 को आपने कहा कि मीट एंड ग्रीट है और फैशन शो है
2: बिल्कुल इसमें बहुत बड़े नाम है जो इस वक्त हमारे साथ इसमें बहुत बड़े नाम है जो हमारे साथ एज अ डिजाइनर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि फर्स्ट टाइम इन द कैलगरी आ रहे हैं जिसमें जैनब चौठानी नौशेमिया नोमान आरफीन इमरान राजपूत अमीर अदनान हुमैर नान एंड शमाइल अंसारी एंड इज अ कैनेडियन ब्रांड आल्सो रॉस एडनसन
0: अच्छा
2: एंड इंडियन ब्रांड रमैया और एक यहाँ वेस्टर्न है योर्डी इज अ ब्यूटी एंड ब्राइडल वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमने वो कैंसर दिया था मल्टी कल्चर
0: और कॉन्सेप्ट आपका जाहिर है अगर पाकिस्तानी ब्रांड्स भी और इंडियन ब्रांड्स भी तो साउथ एशियन
2: साउथ एशियन
0: और ये जो डिजाइनर्स के आपने नाम लिए ना इनमें से बहुत सारे लोग जो हमारे ड्रामाज देखते हैं ना उनके अंदर जो कपड़े पहने होते हैं उनमें से कुछ कुछ ऐसे डिजाइनर जो इन्हीं के होते हैं तो वो कपड़े लेडीज पहचान लेती हैं कौन से
2: डिजाइनर का नाम बात है कि वो लोग यही था कि चाहते थे कि बहुत मुश्किल था उनको कन्विंस करना माई पार्टनर हाला इसने वेरी कन्विंस किया कि कम टू द कैलगरी और ऐसा नहीं है कि इज अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी और यहाँ भी लोग आप लोगों को देखना चाहते हैं तो आप आए यहाँ पे तो ये पूरा उसी स्टाइल में जैसे पाकिस्तान फैशन वीक सनसिल्क फैशन वीक होते हैं ब्राइडल कल्चर वीक BCW हमारा हम टीवी का होता है उसी अंदाज से ये किया जाएगा और क्योंकि यही मैंने देखा था लास्ट आई एम 13 years इन द फैशन इंडस्ट्री मैं तुर्की रशिया में मैंने पाकिस्तान 70 years ऑफ सेलिब्रेशन फैशन शो ऑर्गेनाइज किया था 2017 में तो मैं अभी आया हूँ रिसेंटली ऑलमोस्ट 1.5 year मूव इन कैलगरी तो ये देखा था बहुत बड़ा गैप है और यहाँ पे उस लेवल के नहीं हो रहा तो मैंने कहा क्यों ना हमारी कम्युनिटी पाकिस्तानी

0: कम्युनिटी क्यों ना इस एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो तमाम कम्युनिटीज के लिए बेहतर हो सके वो हमने उसको खड़े करने की कोशिश की है.
1: दूसरा ये कि आपका बैकग्राउंड है इसमें, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने विद इन पाकिस्तान में और ओवरसीज भी कुछ इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया, सो यू गॉट अ गुड आइडिया इसमें होना क्या. अच्छा, अब ये बताइए कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं किस किस तरह से लोग, अब एक तो जाहिर है अगर जो स्पॉन्सर्स हैं आपके अगर बिजनेसेस हैं
0: जी,
1: तो वो लोग स्पॉन्सर करेंगे, वो आप इस पे डिटेल से बात करेगा. दूसरा ये कि लोग टिकट लेके आएंगे.
0: जी, टिकट लेके आएंगे.
1: अच्छा, टिकट कितना है?
0: टिकट 100 rupees है. इसमें हमारा आपका रेड कार्पेट, फैशन शो एंड डिनर इंक्लूडेड है.
1: ठीक है,
0: $100 का टिकट है. और VIP की तरफ अगर आप जाएंगे तो अराउंड 160 का है.
1: ठीक है,
0: हमने दो कैटेगरीज बनाई है और सबके लिए इसमें आपका डिनर और शो बिग इवेंट 5 to 10 o'clock.
1: बेसिकली नेटवर्किंग है, आपके पास डिनर अपॉर्चुनिटी है, जो स्टार्स आ रहे हैं, एंटरटेनमेंट है, पेरेंट्स उनके साथ होगी, फैशन शो होगा. अच्छा, और जो स्पॉन्सरशिप्स हैं उसका ये बताइए कि कुछ थोड़ी अगर डिटेल शेयर करना चाहिए कि आपके पास किस तरह का जो लोग हैं वो स्पॉन्सर कर सकते हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी.
0: देखिए, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि सबसे पहले तो हमें वी आर लुकिंग एट टाइटल स्पॉन्सर. हमारी कुछ कंपनीज वैसे भी बात चल रही है जो कि होम केयर सर्विसेज हो सकती हैं, कुछ शोरूम्स वाले हो सकते हैं, कुछ रियलेटर्स हो सकते हैं, तो वो उनकी हम एज अ उनको टाइटल एज अ स्पॉन्सर लेके चलेंगे. हम वहां अपने लोगों के साथ उनका लोगो अटैच होगा. वो अब जैसे ही वो हमें ऑन बोर्ड होंगे हमारे साथ, वो पूरी मार्केटिंग पूरी 3 months तक पूरी कंपेन के साथ हमारे वो शो उनका कहलाएगा XYZ करके. और वो हमारा टाइटल ऑफिसर
1: स्पॉन्सर.
0: उसमें डिफरेंट उनकी वीडियो स्लॉट्स हैं, उनको टेबल्स हैं, वीडियो स्लॉट्स दी हुई हैं. ड्यूरिंग द स्टेज उनको 3-4 अनाउंसमेंट्स हैं. ये पूरा उनको टाइटल पूरा कंपेन चलेंगे. उनके अगर कोई सेलिब्रिटीज आते हैं तो उनके लिए हम स्पेशल एज अ टाइटल स्पॉन्सर का है, कुछ मॉर्निंग का सेशन ब्रेकफास्ट का कर सकते हैं, लंच एंड डिनर का भी किया जा सकता है जो कि उन सेलिब्रिटीज का होगा और वो आप स्पॉन्सर के लिए वो स्पॉन्सर कर रहा होगा.
1: अच्छा, और जो आपके पास छोटी स्पॉन्सरशिप है, जैसे जो मिनिमम आपकी क्या एक्सपेक्टेशन?
0: मिनिमम हमारी 1500 की है.
1: 1500
0: जो कि आपके अपनी टेबल कस्टमर टेबल पे उनकी ब्रांडिंग दे दी जाएगी, उनका लोगो आपका मीडिया वॉल पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा, उनका अनाउंसमेंट हो जाएगी. ये हमारे एक स्मॉल जो स्टार्टअप्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनको सपोर्ट कर लिए ताकि हम हर एक को चांस दें. वो इस पार्ट ऑफ द इवेंट हमारा बने.
1: राइट. अच्छा, स्पॉन्सरशिप्स होंगे, टिकट्स होंगे, और किस तरह से कोई पार्टिसिपेशन कर सकता है? फॉर एग्जांपल अगर कोई लोकल ब्रांड है, कपड़े बनाते हैं अपने, या
0: वो हमारी 30th को एग्जीबिशन है कोर्टयार्ड बाय मैरियट होटल में, तो वो अपना वहां पे डिस्प्ले कर सकता है ब्रांड, चाहे वो वेडिंग से रिलेटेड हो, फ्लावर्स से रिलेटेड हो, या क्लोदिंग ब्रांड से रिलेटेड हो. तो थोड़ा सा हमने उसको दिया है कि इस एलीट क्लास, उसमें जेंटली जो है थोड़ी एलीट क्लास आएगी और उसमें वो फिर पार्टिसिपेट कर सकें. और थोड़ा सा वो बिल्कुल लोकल लेवल नहीं होगा, इज अ हाईली स्टैंडर्ड एलीट क्लास.
1: अच्छा, ये एलीट क्लास का कह के ना आपको, आपने मुझे थोड़ा वैसे ही डरा दिया. इसका मतलब है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने अगर अभी अभी ट्यूनिंग किया है तो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं संगीत स्टूडियो में, हुशान मेरे साथ. कैनेडा लाइफ स्टाइल एग्जीबिशन, फैशन शो, एंटरटेनमेंट जो होने जा रहा है 28 August को, टीम के बड़े अमेजिंग दो और मेंबर पहुंच गए हैं यहाँ पर और उनसे भी आपकी बातचीत कराते हैं. हाला, प्लीज माइक अपने पास कर लीजिए. एंड मरियम, आप ये वाला माइक प्लीज, एंड अपने अपने हेडफोन लगा लीजिए. आज लाइव हैं तो फिर लाइव ही चलेगा. हम एक ओके ऑफ देयर होते हैं तो फिर मैं आपका वो भी अरेंज करता हूँ. क्या हाल चाल है, कैसी है? माइक बिल्कुल पास हो जाइए आप. ठीक है. अच्छा, मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास. मेरे साथ हैं जी हाला बदर, टीम का जो दूसरा इम्पोर्टेंट मेंबर है जो इस पूरे इवेंट को लेके चल रहे हैं, और उनके साथ हैं मरियम मिर्जा. मरियम का नाम अब बहुत सारे लोग कैलगरी में फैमिलियर हो गए हैं. वो काम कर रही हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, फोटोग्राफी करती हैं, और जो बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिटी के जो चैरिटेबल इवेंट्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड, अ लॉट ऑफ पीपल नो हर. वो भी इस प्रोग्राम को, इस इवेंट को बनाने, करने, मार्केट करने में साथ दे रही. क्या हाल चाल है दोनों लेडीज के आपके? पहले तो ये बताइए कि हमने वैसे शुरू कर दिया था तो कुछ चीजें हमने कवर की हैं. अगर फिर से मैं आपसे हालात पूछूं, पहला सवाल तो मेरा ये है कि व्हाई डू यू थिंक कनाडा लाइफस्टाइल यहां कैलगरी में आपको ख्याल क्यों आया करने का? व्हाई डू यू थिंक इट्स रेलेवेंट?
2: इसलिए कि व्हाई नॉट कैलगरी. मैं इतनी जगह जाती हूँ, ह्यूस्टन में, डैलस में, पूरी दुनिया में, टोरंटो में,

0: their fashion weeks hota hai. But Calgary is the only place which is always left behind. So I want to just check my city ki meri city mein kitni dam hai, kitni jaan hai, and that's it.
1: Ye to aap hume provoke kar acha ye to fir ab hamari izzat ka masla ho jayega ki Calgary mein jaan hai ki nahi hai. Acha, and that was the core objective jab aapne is event ke bare mein socha.
0: That was kind of, yeah, because why not my own city? Ye bilkul untouched market hai yahan. I'm sure logon ne pehle bhi kiye hain, kafi dafa ho chuka hai, but kabhi designers khud nahi aaye. So I just want to open a new market.
1: Social media pe jitna fashion main dekhta hu yahan hamare jo locals aa rahe hain, hamare jo social media platforms pe log hain, ladies hain, to mujhe aisa lagta nahi ki log ko fashion ke bare mein ko kaam sense hai kisi kisi ki. Jitne acche kapde, baat cheet uske bare mein, jitna khoobsurati tarike se use pesh kiya jata hai, ya hum mardon ka to khair chhod hi dein, ab bechare hum Calgary mein hain ki Houston mein, unko fark nahi padta, hame to bas ye off white, do teen tarah ke brown aur is type ke 3-4 color hain jo humne. Acha, logon ko ye bhi nahi pata chalta humne kapde different pehne hue hain, jab agle din pehen ke aap hi jaye. Yeah, wo hamari color sense aisi hai sir, isme koi manne mein
2: koi
1: bilkul hai nahi. Ye jo khoobsurati hai fashion ka, jo aesthetics hai, कोई कहने की सीरियसली नहीं है, इट इज ओवरवेलमिंगली लेडीज की सेंस है. वो अच्छे कपड़े बनाती हैं, पहनती हैं, और वो बिलीव करती हैं इसमें कि ये एक जिंदगी का बहुत ही लाजमी हिस्सा है. एंड आई एम श्योर कैलगरी हैज अ प्रीटी स्ट्रांग मार्केट. जितने हमारे यहाँ बुटीक स्टोर्स कपड़ों के और जितने सप्लायर्स यहाँ पर आ गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ह्यूस्टन से, और ह्यूस्टन के साथ एक और चीज भी हमारी मिलती है उसके साथ, वहां भी ऑयल एंड गैस है, यहाँ भी ऑयल एंड गैस है, वहां भी बड़े साइज का स्टेक खाया जाता है, यहाँ भी बड़े साइज का स्टेक खाया जाता है. सो बहुत सारी चीजें, काउबॉय हैट्स हमारे उनके साथ मिलते हैं, एंड मुझे ये लगता है दैट टेल्स यू कि ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बड़ी अच्छी
0: डेफिनेटली है. बट अभी भी मुझे लगता है कि डिजाइनर्स की कमी है, रीसेलर्स बहुत है हमारी मार्केट में, सो वी वॉन्ट टू ब्रिंग मोर डिजाइनर्स टू द सिटी.
1: अच्छा, अब तक जो ज्यादातर यहाँ फैशन शो हुए ना, हालांकि वो मोस्टली ये होते थे कि वो कपड़े लोकल जो सप्लायर्स हैं बेसिकली वो जमा होके तो कोई इवेंट्स करते थे, फैशन शो छोटा मोटा, या ये है वो एक्चुअल डिजाइनर्स यहाँ बहुत कम, मुझे याद नहीं पड़ता, मैं पिछले 15-18 साल से यहाँ की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देख रहा हूँ उसको, पर मुझे लगता है दिस इज प्रोबब्ली द फर्स्ट टाइम द काइंड ऑफ डिजाइनर्स आपने बताए, बल्कि आप भी थोड़ा सा मुझे इस पे बताइए जो डिजाइनर्स आप होप कर रही हैं, कौन कौन है उसमें, एंड एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड अबाउट देम.
0: देखिए, सबसे पहले तो आई विल लाइक टू टॉक पर जानम चौटानी, वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में बहुत मशहूर है. शी इज रियली रियली गुड डिजाइनर. इमरान राजपूत है, नुमान आरफीन है, नौशे मियाँ जिन्होंने डिजाइन की हुई है प्रिंस विलियम के शेरवानी, तो ही हैज हिज ओन क्लास ओवर देयर.
1: ये फिर से बताइए क्या.
0: हमारे एक बड़े अच्छे डिजाइनर हैं नुमान आरफीन, नौशे मियाँ के नाम से वो अपनी भेजते हैं शेरवानी कराची में. उन्होंने प्रिंस विलियम की शेरवानी डिजाइन की थी कुछ अर्से पहले, सो ही इज रियली बींग फेमस फॉर दैट. सो उन्होंने पूरी रॉयल फैमिली की शेरवानियां डिजाइन की हुई है,
1: उनको शेरवानियां पहना दी सबको.
0: एग्जैक्टली बिल्कुल.
1: नो, बट दैट्स अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि ज़ाहिर है किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी ब्रांड का एक कोई क्राइटेरिया अगर आप सेट करेंगे तो ऐसे ही सेट करेंगे ना, कि नुसरत फतेह अली खान साहब ने रेडियो सिटी में गाया था, ठीक है, और वेम्बले अरीना में गाया था. दिस इज द हाईएस्ट एन आर्टिस्ट कैन एक्सपेक्ट. तो एज ए डिजाइनर अगर आपको ज़ाहिर है इस तरह के मॉडल्स मिलते हैं जो आपके कपड़े पहनते हैं, दैट्स नॉट अ स्मॉल थिंग.
0: इट्स डेफिनेटली नॉट अ स्मॉल थिंग.
1: अच्छा मरियम, आप बताइए क्या हाल चाल है और कैसी हैं.
3: ठीक हूं शान भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर अगेन. इवन मैं आते रहती हूँ, मैं रास्ता फिर से भूल गई.
1: ये इंटेलिजेंट लोगों की निशानी है. मैं सीरियसली आपको बताऊं, ये इंटेलिजेंट लोगों की निशानी है, क्योंकि उनका ब्रेन इस तरह से वायर हुआ हुआ होता है कि वो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें याद रखता है और बाकी चीजें जो है भूल भूल जाते हैं. अच्छा, अब आप ये बताइए, आप जाहिर है टीम को ज्वाइन किया आपने, हाला खुशराज भाई को, इस इवेंट को आप क्या, क्यों यू थिंक दैट यू शुड हैव बीन पार्ट ऑफ दिस इवेंट.
3: सो आई फील लाइक इतने टाइम से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ मीडिया में, और मैंने इस तरह का इवेंट नहीं देखा है. तो अब क्योंकि मैं मार्केटिंग करती हूँ, तो आई एम ऑल्सो द मार्केटिंग मैनेजर फॉर दिस इवेंट एज वेल, और रेड कार्पेट होस्ट भी हूँ. तो मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, और मैं इस बारे में किसी से बात भी कर रही थी कि हमारे कैलगरी में काफी इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स, हर तरह के शोज होते हैं, लेकिन दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, एंड लोगों को थोड़ा पता नहीं है कि कैसा इवेंट होने वाला है. तो उसी के बारे में अवेयरनेस भी रेज करना चाह रहे हैं कि डिजाइनर्स पहली बार आ रहे हैं, तो इसलिए दिस इज अ वेरी गुड इवेंट.
1: वो पंजाबी का टेस्ट आपको फट्टे चाके दोगे कि नहीं.
3: जी पट्टे बिल्कुल चाके. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड शो.
1: ओके, सो अच्छा, अब शायद भाई टच्ड ऑन स्पॉन्सरशिप्स की हमने बात की है कि $1,500 से लेके जो आपकी टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो

0: आपको. नंबर दो नंबर नोट कर लें जी मेरे पास इस वक्त हैं. शिराज डायरेक्टर हैं, आई मीन वन ऑफ द पार्टनर डायरेक्टर जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आपके साथ. 4374320239 और हाला 4036898713. 403-689-8713. पंजाबी द तड़का 403-689-8713 इज द नंबर जो आपने याद रख लेना. ये हो गई चीज. अच्छा, अब आपने अभी जब जिक्र किया तो आपने कहा कि एग्जीबिशन आपकी किसी दूसरी जगह पे है, इवेंट आपका डेरा बैंक्वेट.
1: जी, डेरा बैंक्वेट हॉल में 28 को और 30th को एग्जीबिशन है जिसमें तमाम डिजाइनर्स अपना डिस्प्ले कर रहे होंगे. इसमें हमें कुछ लोकल ब्रांड्स भी चाहिए जो अच्छा, जो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि इंटरनेशनल डिजाइनर के साथ अपना वर्क दिखाने के लिए.
0: राइट.
1: और वो फुटफॉल वो उनको भी चाहिए जो यहाँ उनको नहीं मिलता.
0: अपॉर्चुनिटी
1: में नहीं, जो इंटरनेशनल के साथ वो लोग आएंगे तो एक अच्छा उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है जो लोकल वेंडर्स है.
0: राइट. अच्छा, एक चीज जो हमने नहीं टच की जो हमारे लिए कल्चर के लिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हमारे यहाँ कोई मरे जिए शादी मंगनी तलाक कुछ भी हो खाना होता है. हमारी जिंदगी में खाना बहुत इंपॉर्टेंट
2: है,
0: बहुत ज्यादा, बहुत
2: एंटरटेनमेंट भी खाना
0: है. हमारा एंटरटेनमेंट भी खाना. कह रहे राजू के, वो कहना नहीं खाना. कह रहे नहीं थक गया. सो खाना कहाँ जा रहे हैं खाना खाने, कहाँ से आ रहे हैं खाना खा के, मिलते हैं खाना
1: खाना खा के मिलते हैं
0: अगली बार मिलते हैं खाना खा के. सो खाना इज जस्ट बाकी दुनिया से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट. और हमारा खाना एक और बड़ा जुल्म किस्म करता है. यहाँ तो इन्हें बर्गर शर्गर ले लिया गाड़ी चलाते हुए आपने खा लिया. हमारे खाने पे 8 घंटे लगते हैं पकाने में. अच्छा, खाने में 10 मिनट लगते हैं. मतलब हमारी जो दादियां नानियां होती थी नाश्ता बना के साथ ही लहसुन छीलना शुरू कर देती थी लंच के लिए. अच्छा, जब लंच अभी खत्म नहीं होता था तो दाल चुन रही होती थी डिनर के लिए. सो 24/7 खाना. मतलब तो आप समझ गए होंगे ना खाना जो इस इवेंट में है उसमें किस तरह का, कोई थोड़ा उस पर बात करिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप किस तरह का डिनर रख रही?
2: देखिए, डिनर तो हमारा मिक्स होगा बिकॉज हमारे पास कुछ नॉन वेज इंडियंस भी हैं. हर तरह की कम्युनिटी आ रही है. वी विल वी आर थिंकिंग कि वी विल मेक टू कॉर्नर्स, वन स्पेशली फॉर नॉन वेज, वन फॉर मिक्स जो भी खाना चाहे, मीट वगैरह का भी. और इसका कॉन्ट्रैक्ट एज ऑफ नाउ तो हमारा यही है कि हम डेरा से ही करवाएंगे. उनके पास बड़ा अच्छा उनका सारा सिस्टम है, आपने तो खाया हुआ है. तो बस यही है इंशाल्लाह ताला इरादा.
0: ये तो जबरदस्त. अब आपने सीरियस हो गया क्योंकि अब तक यही समझते थे. अच्छा, अब टाइम पहले ना कभी रुका है ना आज रुकना है. आपकी टाइम निकाल के यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई विश ऑल यू द बेस्ट. लिसनर्स, आपने डिटेल्स सुन रही हैं. कैनेडा लाइफस्टाइल कैलगरी फैशन शो अगस्त 28, कुछ भी गूगल करें, सर्च करें, फेसबुक पे आपको इधर उधर इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी. लास्ट रिजोर्ट आप मुझे कॉल कर सकते हैं 403-6126126100. आई विश ऑल ऑफ यू लव, पीस, रिस्पेक्ट, हेल्थ एंड वेल्थ. आपसे मुलाकात होगी अगले फ्राइडे को इसी टाइम इसी चैनल पे और फिर आएंगे घर. खुदा लाए.
3: शुक्रिया. आपने संगीत स्टूडियो ट्यून किया.
4: 1489 港珠澳大桥香港口岸完成改善工程。运输联线表示，琴日迎嚟咗2020年。